मतकद गीते खोल खड खड बोरु देनवा सो मिलन गीते गायन कराने जब प्यार की से होता है चित्रपट लता मंगेशकर

मिलंगीत मधुमती चित्रपटे गायनेकराने मोहम्मद राफी तामत में जनप्रियवन सुदुकालु चित्रपटे वाय जयंती माला समग्र दिलीप कुमार तमा मे चित्रपटे रंग पैवे इतिंग अभी तोरा गत्ता ओबे इल्लीमानु मे गीत बहुत दिन के लिए तिबुना मधुमती चित्रपटे गीत गणना वक्म ए अतरिंग मातोरागत नेत्तम वेडिमदिन किल्ला तिबु गीत अभी दन संबंध में

मिलन गीते जब प्यार किसी से होता है चित्रपट देंगे दर्शन से हटे एक तम में गीत में चित्रपट प्रदर्शन है उन्हें मोहम्मद राफी समग्र लता मंगेशकर तम में गीते गायने कराने तो नेक्स्ट लीड फ्रॉम 1996 जब प्यार किसी होता है उन मोहम्मद राफी मीट लता मंगेशकर

गीते गायन के लिए महेंद्र कपूर हमराज चित्रपट एकदास नाम से हेट हते वर्षे तमय चित्रपट प्रदर्शनी हुने मिलन गीते लता मंगेशकर समग किशोर कुमार तम गायने करानी संगीत सपे हुआ एस डी बर्मन एकदास नाम से हेट नामे आराधना चित्रपट राजेश खन्ना समग शर्मिला ठाकुर तम मे चित्रपट रंग पानी सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम द किशोर कुमार उन लता मंगेशकर फ्रॉम द फिल्म आराधना द लीड नोन से नून नोन सेक्सिक राजेश खन्ना और शर्मिला ठाकुर हट दीसम फिल्म की स्पील्ड म्यूजिक फ्रॉम एस डी बर्मन

0: मिलन गीते मोहम्मद राफी गाने कराने चित्रपटे दोस्त थी सौंद एक गीते तो जो नेक्स्ट लीड फन मोहम्मद राफी
1: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को

1956 චෝරි චෝරි චිත්‍රපටයේ මන්නා ඩේස් සමග ලතා මංගිස්කාර් මේ ගීතය ගායනා කළා. 1956 ෆුම්සිං for the film Chori Chori, Manna Day on Lata Mangeshkar hata disa lead ge sungana. Milan geete Talat Mahmud gen Shankar Jayakishan tamai me chitrapateta sangeete rasavat kale. Pachita chitrapate 1953 tama pradarshane une. तुझे अपने पास बुलात हाय के न गीते तमा में थलात मोहम्मद में चित्रपट एक गाने के लिए नेक्स्ट लीड फ्रॉम द फिल्म पटीटा 1900 ड्राउन पुम्सिक लीप दिस फिल्म इन इंडियन और थलात महमूद हट लीड के सुंगन

मिलङ्गीत मन्ना डे गायनिकला श्री हारसे विश्व चित्रपट नेक्स्ट लिड फन द फिल्म 300 स्वान्सिक फन मन्डा डे

दास नमस्य अनुनामी प्रदर्शनी उन ताल चित्रपटे ट में गीते ऐतुलत्तेनो गायने करने अलका याक्निक समग उदय नारायण में चित्रपटे रंगपानो अक्षय खन्ना समग ऐश्वर्या राय संगीते सपयाने ए आर रहमान पदराजने आनंद बाक्षिकेन इस फिल्म लीप 1999 दी हाइसन ताल अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय हट हाउप्रोल स्पील Dieses Lied wird gesungen von Alka Yagnik und Uday Narayan, Musik von A.R. Rahman, Lyrics von Anand Bakshi. Tal se Tal Mila.

इंद्रसेन से हटे वसरे प्रदर्शन दिल अपना और प्रीत पराय चित्रपटे रंगपानवा मीना कुमारी राजकुमार ओम प्रकाश समग किशोर साहू संगीते सप्याने शंकर जाय किशन में गीते गायन करनवा लता मंगेशकर दिल अपना और प्रीत पराय लिव 1966 इन इंडिस किनोस हाउप्टोलग स्पेल्ट मीना कुमारी उन राजकुमार म्यूजिक फॉन शंकर जायकिशन उन दिस लीड फॉन लता मंगेशकर।